पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। तू तो जा तू है गॉड, ये तो बता तू है कौन।